0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और सोफिया जमशेद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। खलील साहब, पाकिस्तान में रहते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि गाड़ी या साइकिल पार्क करना इस कदर दुश्वार होगा।
2: जी, और मजीद दुश्वार ये हो गया कि इस साल के यकुम अप्रैल से बाई साइकिल के बारे में नए कवायद और जवाबित नाफिस हो गए। गाड़ी ही नहीं बल्कि साइकिल की गलत पार्किंग पर भी अच्छा खासा जुर्माना होता है।
0: चंद साल पहले हमारे हमसायों में से एक बच्चे की साइकिल गलत पार्किंग की वजह से जब्त हो गई। उसकी वालिदा पूरे 4,000 जन दे के साइकिल छुड़वा के लाई थी।
1: साइकिल हो या गाड़ी, कानून की पासदारी होगी अब जरूरी।
2: जी, और मैं तो भाई हमें

0: ट्रेन पर सफर को तरजीह देती हूँ। ना ट्रैफिक में फंसे, ना पार्किंग का मसला, ना कोई चालान, कम खर्च, बाला नशीन।
1: अरे वाह, मेरी पसंदीदा सवारी भी ट्रेन ही है। हमारी बिल्डिंग में तो साइकिल की पार्किंग भी अलग से किराए पे लेना पड़ती है।
0: जी, और अगर आपने अपनी मुकर्ररा करदा जगह के अलावा कहीं साइकिल पार्क कर दी तो फिर शिकायत का इतना बड़ा सारा पर्चा आ जाता है।
1: शुक्र है मेरे लिए कभी नहीं आया।
2: हाँ, चूंकि आप साइकिल चलाती ही नहीं।
0: जी, इतराइए नहीं।
1: अच्छा कुछ साल पहले हमारे घर के नज़दीक कम्युनिटी सेंटर की इमारत के अहाते में साइकिल पार्किंग वाली जगह पर अजीब से स्टैंड तामीर हुए। पता चला कि साइकिल शेयरिंग वाली सहूलत का एहतमाम हो रहा है।
2: साइकिल शेयरिंग मरकज? हमने तो साइकिलों वाली दुकान से किराए पर साइकिल लेने का सुना था। ये
0: जी खलील साहब, जापान में साइकिल किराए पर लेने के दो निज़ाम आम हैं। एक दुकान से साइकिल किराए पर लेना और दूसरा साइकिल पोर्ट से साइकिल शेयरिंग।
1: साइकिल शेयरिंग सिस्टम बड़ा जदीद निज़ाम है। इसमें आप शेयर करदा या शेयर शुदा साइकिल को साइकिल सर्विस की एक सहूलत से एक पोर्ट से लेकर किराए पे लेते हैं और फिर इसे किसी भी दूसरी पोर्ट पे या अड्डे पे वापस कर सकते हैं।
0: इसके लिए आमतौर पर स्मार्टफोन ऐप इस्तेमाल की जाती है। इसी के जरिए बाइक को इन लॉक किया करते हैं। फिर आम साइकिलों के अलावा बहुत सी शेयर बाइक्स यानी बैटरी वगैरह से चलने वाली मोटर से लगी हुई साइकिलें होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें चलाना आसान होता है। ये शहरों में मुख्तसर दौरों या फिर सियाती मकासद के लिए एक आसान ऑप्शन है।
2: अच्छा,
1: यकम अप्रैल 2026 के आदाद व शुमार के मुताबिक टोक्यो के सिर्फ मिनातो इलाके में ही 204 साइकिल पोर्ट्स हैं और मेरा ख्याल है कि इलाके की तकरीबन हर सड़क पर साइकिल पोर्ट है। माफ़ कीजिएगा, मुझे सिर्फ अपने मोहल्ले का पता है, उसी का बताऊंगी।
2: सही।
1: तो हमारे शहर में तो हमारे मोहल्ले में तो काफ़ी सियाह इसको शहर भर में इस्तेमाल करते हैं ये सहूलत। साइकिल पोर्ट्स की एक खसूसी वेबसाइट होती है जिस पर आप करीब तरीन साइकिल पोर्ट का पता चला सकते हैं और फिर किसी भी पोर्ट पर दस्तियाब साइकिलों की तादाद, बैटरी की सूरत हाल कोई एप्लीकेशन के ज़रिए ऑन टाइम तस्दीक हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि क्रेडिट कार्ड आपके पास हो, स्मार्टफोन आपके पास हो।
2: अच्छा, ज़ाहिर है एप्लीकेशन इस सहूलत से इस्तेफादा करने के लिए कार्ड और स्मार्टफोन का होना तो नागुजीर है ना इस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठाने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बताएंगे साइकिल किराए पर लेने के बारे में। ये साइकिल आमतौर पर किसी दुकान, होटल या सियाहती मरकज से किराए पर ली जाती है। ज़्यादातर सूरतों में आपको बाइक को उसी जगह वापस करना पड़ता है जहाँ से आपने उसे किराए पर लिया था। किराए की फीस घंटावार या दिन के हिसाब से ली जा सकती है और न सिर्फ साइकिल, मोटरसाइकिलों और मोटर वाली ई स्कूटी पर किराए पर ली जा सकती हैं।
1: अरे, सिर्फ साइकिल पोर्ट्स ही नहीं बढ़ी बल्कि उनके जो हैं इकसाम भी बढ़ गई हैं।
2: अच्छा, साइकिल हो या किक बाइक हो, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे ख्याल में यह है कि ये माहौल दोस्त होते हैं। ना कोई ईंधन का खर्च, ना जहरीली गैसों का अखराज, जैसे आपने कहा कम खर्च बाला नशीन।
1: मैंने जी आज बार बार कहा।
0: अच्छा, साइकिल का इस्तेमाल बढ़ना तो अच्छी बात है लेकिन अक्सर मकामात पर साइकिलों के लिए अलग लेन ना होने की वजह से पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात भी हुई हैं।
1: इसीलिए तो यकम अप्रैल से, रवां साल यकम अप्रैल से साइकिल सवारों के लिए पहले से ज़वाइद पहले से सख्त हो गए हैं। अभी पहले भी सूफिया ने बताया, आज
2: ज़वाइद सख्त हो गए हैं। बिल्कुल, और साइकिल की सवारी तो हमने मेरे ख्याल में कर ली है तो अब क्यों ना गाड़ी किराए पर लेने का तरीका भी मालूम कर ही लें।
0: जी जी, जापान में गाड़ी किराए पर लेने के लिए आपके पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है।
1: जी, जापान में किराए की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर हिरागाना हरूफ वा या रे लिखे होते हैं जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाता है।
2: अच्छा, मेरे पास बिल्कुल दुरुस्त जापानी लाइसेंस अगर मौजूद है तो क्या मैं भी गाड़ी ले सकता हूँ किराए पे?
1: जापानी लाइसेंस वाले तो ज़रूर ले सकते हैं, इसके अलावा गैर मुल्की सियाह भी गाड़ी किराए पर ले सकते हैं, पर इसकी जो शराइत है हर कंपनी के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन अक्सर सूरतों में एक दुरुस्त बैन अल-अक़वामी ड्राइविंग परमिट और पासपोर्ट पेश करके गाड़ी किराए पर ले जा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि ड्राइविंग लाइसेंस उस मुल्क का होना चाहिए जो ड्राइविंग लाइसेंसों के बैन अल-अक़वामी माहदे में शामिल हो।
0: मेरी एक दोस्त हमेशा रेंटल कार की सर्विस इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने बताया कि गाड़ी लेने के लिए एक खास एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करते हैं।
2: ضرور ایسا ہی ہوگا. ویسے سامین وسیمہ صاحبہ جیسے سائیکل نہیں چلاتی ویسے ہی ڈرائیونگ سے بھی ماشاء اللہ فارغ ہیں،
1: لیکن زبان خوب چلاتی ہیں، بچ کے
2: اور اب سفر پر نکلنے کے موضوعات پر گیت بھی سنیے. تو ہمارے پروڈیوسر کامیامہ صاحب نے یہ گیت منتخب کیا ہے، اور اس گیت کو سنوانے سے پہلے کہتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم سفر کے لیے اچھا اور یادگار موسم ہے نا. میرا تو نقشہ کھول کر سائیکل چلانے کو اور شہروں یا دیہاتوں میں گھومنے کو دل چاہتا ہے.
0: بات تو بالکل درست ہے. واقعی جب کبھی آپ انجانے یا نئے راستوں پر سفر کرنے جاتے ہیں تو آپ کو نقشے کی مدد سے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. نقشہ دیکھتے ہوئے سفر کے بارے میں سوچنا بھی بڑا دلچسپ ہے.
1: کامیامہ صاحب پوچھ رہے ہیں سامعین آپ سے کہ کیا آپ نے کبھی نقشے کے ساتھ خیالی سفر کا منصوبہ بنایا ہے؟ پھر کہتے ہیں جب آپ کرائے کی گاڑی یا سائیکل لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کیا آپ اپنے نقشے کے ساتھ گرمیوں کی اپنی مہم پر یا سفر پر نکلتے ہیں؟
2: تو آج ہم کامیامہ صاحب کا منتخب کردہ نیو اسکائی نیو میپ یعنی افق تازہ اور نیا نقشہ متعارف کروا رہے ہیں.
0: یہ نیجی گاسا کی ہائی اسکول آئیڈل کلب نے پیش کیا ہے. یہ اینیمے سیریز لو لائف نیجی گاسے کی ہائی اسکول آئیڈل کلب کا گروپ ہے.
1: 2020 میں ریلیز ہونے والا یہ گانا اس کے سیزن ایک یا سیزن ون یا سیزن اول کا اختتامی گانا ہے. اس اینیمے میں اسکول کی لڑکیاں آئیڈل سرگرمیاں کرتی ہیں، رقص اور گانے کو اسکول کلب کے طور پر پیش کرتی ہیں، اور یہ ڈرامہ ان کے اور نوجوانوں کے روابط کو دکھاتا ہے.
2: گانے کے بول کہتے ہیں جب آپ گھومتے ہیں تو آپ کو کچھ آنے والا محسوس ہوتا ہے. آسمان دن بدن موسم بموسم بدلتا رہا، پریشان نہ ہوں لیکن جو کچھ آپ کو پسند ہے اس کا لطف اٹھائیں. کسی بھی قسم کے مستقبل میں اگر ہم ایک ساتھ مسکرا رہے ہوں تو مجھے خوشی ہوگی. تو آئیے صرف ایک اپنا نقشہ لے کر جاتے ہیں. ہم خواب دیکھنے کو پسند کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خواب دیکھیں گے.
0: تو ہمارے سامعین اس گانے کو سن کر خوشگوار سفر کریں. نقشہ کبھی کبھار کسی شخص کے مستقبل کی علامت ہوتا ہے.
1: اطالوی جملے تابولا راسا یعنی خالی تختی یا کورا کاغذ کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے ہر طرح کے امکانات ہو سکتے ہیں. اپنے سفید نقشے میں اپنے رنگ بھر سکتے ہیں اور شاندار گرمیوں کی شاندار یادیں تشکیل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ اس گیت کو پسند کریں گے. تو آئیے سنتے ہیں.

0: जी सामिन, गीत न्यो स्काई न्यो मैप आपने सुना, कैसा लगा?
1: मुझे तो बहुत पसंद आया। और अब जापानी मुहावरों और कहावतों पर मुश्तमिल मेरा पसंदीदा सिलसिला है जापानी कहावत गरी।
2: इस सिलसिले में हम जापान के जबान जदयाम मुहावरे पेश करते हैं।
0: आज का मुहावरा है कहो ओ नेते माते, माफ कीजिएगा, कहो वा नेते माते।
2: इसका लफ्जी मतलब है नतीजा आने या इनाम मिलने के इंतजार करने के दौरान नींद।
1: चूंकि किस्मत इंसान के बस से बाहर होती है, इसलिए बेहतर है कि जल्दबाजी या जबरदस्ती ना की जाए, बल्कि सही मौके का सुकून से इंतजार किया जाए।
0: जी, ये है इस मुहावरे का इस्तलाही मानी। और इसमें लफ्ज का हो यानी इनाम या बदला बुद्ध मत का तस्वुर है, जो उस इनाम की तरफ इशारा करता है जो किसी को पिछली जिंदगी के उसके अमाल के नतीजे में मौजूदा जिंदगी में मिलता है। इसका मतलब खुशकिस्मती मिलना भी है।
2: इस जुमले का मतलब यह नहीं है कि लापरवाही या सुस्ती से काम किया जा सकता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी पूरी ताकत या वसाइल सर्व करने के बाद इंसान को पुरसकून और मुस्तहकम जहन के साथ अच्छी खबर का सब्र से इंतजार करना चाहिए।
1: वाकई कामयाबी तो सब्र से इंतजार करने वालों को ही नसीब होती है।
0: हमारे भी कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा।
2: बिल्कुल।
0: समिन, ये कहावत रवायती इरोहा कारुता मुहावरों में से एक है। तो दोस्तों, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं।
0: जी सामिन, आपको याद दिलाते चलें कि अप्रैल में हमने एक सिलसिले में जापान में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए गैर मुल्की जुबानों में मुआवनत की फ्राहमी के बारे में बताना शुरू किया था। अब कुछ तातुल के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं।
2: किसी शख्स के शदीद अलील या जख्मी होने की सूरत में हंगामी नकलो हमल के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाती है। नई सीरीज में एम्बुलेंसों और हंगामी हालात में उन्हें इस्तेमाल करने के मौजूद तरीके के बारे में बताया जा रहा है।
1: इस सिलसिले की पहली किस्त में 5 अप्रैल को एम्बुलेंस सर्विस पर तवज्जो मरकूज करते हुए बताया गया था कि जापान में जब कभी एम्बुलेंस बुलाने के लिए 119 पर टेलीफोन करें तो टेलीफोन ऑपरेटर जरूरी मालूमात हासिल करता है। ऐसे मौके पर टेलीफोन पर बात करते हुए तर्जुमे के निजी मराकज के जरिए बयख वक्त तर्जुमे की सहूलत भी दस्तियाब हो सकती है।
0: इस सिलसिले की आइंदा किस्त में फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की तय करदा गाइड फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज के मुताबिक बताएंगे कि एम्बुलेंस को कैसे बुलाया जाए।
1: जापान में एम्बुलेंस बुलाने के लिए आपको 119 डायल करना है।
2: अच्छा, चाहे जापान के किसी भी शहर में हो, यही नंबर है?
0: जी जी, बिल्कुल। एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन पे बस आपने डायल करना है 119-119। इससे आपका राबता मुकामी फायर डिपार्टमेंट के एम्बुलेंस भिजवाने वाले ऑपरेटर से हो जाएगा।
1: अच्छा, टेलीफोन पर फायर डिपार्टमेंट से रब्ता होगा?
0: हाँ हाँ, असल में वो भी आपको वजाहत करती हूँ। तो एम्बुलेंस भिजवाने के लिए ऑपरेटर आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछेगा, इसलिए आप एक एक करके इन तमाम सवालात के जवाब दीजिए।
2: आपको कुछ मालूम है किस किस्म के सवालात वो पूछते हैं?
0: सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि क्या ये हंगामी सूरत हाल फायर यानी आतिश जदगी की वजह से है, यानी कि फायर डिपार्टमेंट को किया ना, तो वो ये पूछेगा। तो वो फिर दूसरा पूछेगा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी यानी हंगामी नौयत का तिब्बी मसला है, लिहाजा आपने जवाब देना है मेडिकल इमरजेंसी।
1: अच्छा, उसके बाद
0: आपका एड्रेस पूछा जाएगा।
2: और अगर एड्रेस याद ना हो? मुझे तो अपना पता जापान का अब भी याद नहीं है।
0: जेब में रखिएगा लिख के। वैसे ऐसी सूरत में किसी नज़दीकी चौराहे या इमारत या काबिल शनाख्त मकाम के बारे में मालूमात मुहैया करें।
1: अच्छा, मुझे याद है कि एक बार मुझे बाहर किसी शख्स के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। चूंकि वो सड़क थी तो ऑपरेटर ने मुझे ये पूछा कि नज़दीकी यूटिलिटी के खम्भे पर लिखा हुआ नंबर बताएं।
0: हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा तरीका है और इससे भी लोकेशन आसानी से पता चल सकती है। फिर ऑपरेटर बीमार शख्स का नाम, उसकी उम्र और मर्ज की इलामात जाहिर होने का वक्त पूछेगा। और हाँ, ऑपरेटर आपसे आपका टेलीफोन नंबर भी पूछेगा, इसलिए ऐसा नंबर बताना है जिस पर आप फौरी तौर पर उस वक्त दस्तियाब हों।
1: اچھا یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن اگر کوئی ایسی فوری نوعیت کی ہنگامی صورتحال ہو جس میں ایمبولنس جلد از جلد پہنچنا ضروری ہو اور سوالات جواب دینے میں تاخیر ہونے کا احتمال ہو تو کیا کیا جائے؟
0: ایسی صورت میں تمام سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ایمبولنس بھجوا دی جائے گی، لیکن آپ یہ یاد رکھیں گھبرانا نہیں ہے، ہوش و حواس قائم رکھنے ہیں، تحمل اور سکون کے ساتھ سب باتیں بتانی ہیں۔
2: چلیے سامعین، یہ تھیں جاپان میں ایمبولنس بلانے کے متعلق معلومات۔ مزید معلومات آئندہ ہفتوں میں نشر کی جائیں گی۔ آخر میں ایک بار پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ جاپان میں ایمبولنس کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 119۔
0: اور آج کل تو سامعین گرمی جاپان میں اس قدر زیادہ ہے اور جو کہ عام ہر سال زیادہ بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے عمر رسیدہ لوگ کیا، بچے کیا، اچھا خاصا نوجوان بھی لو لگنے سے بیمار ہو جاتا ہے، اور عام طور پر یہ خدشہ کھلی دھوپ میں یا کھلے مقام میں، آپ کہیں باہر ہوتے ہیں تو وہاں یہ خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کل یوں ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جو ہے ایمبولینسز کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔
2: اکثر میں بھی جب بازار میں جاتا ہوں تو ایمبولینسوں کی آوازیں آتی ہیں، اور اکثر میرے خیال میں لوگ لو لگنے کی وجہ سے ہی سفر کرتے ہیں۔
0: جی جی بالکل
1: جی۔ اور
0: اب اجازت لینے کا وقت ہے تو صوفیہ ہمیں کیا بتائیں گی، لیکن خلیل صاحب کو پہلے بتانے دیں۔
1: جی جی،
2: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو کے توسط سے ہمارے کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں،
0: جو ابھی کوئز شروع ہوا ہے، جاپانی زبان دانی۔
2: جی جی بالکل، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے آپ ہمیں یہ جواب بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام سننے اور اپنی آرا دینے کے لیے آپ ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس یاد رکھیں، nhk.jp/اردو۔
1: ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں، استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کیجیے۔
0: جی سامعین، اب اپنے میزبانوں صوفیہ جمشید، خلیل شیرازی، وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے۔